0: शिक्षा प्रवर्धार विकास में उल्लेखनीय प्रगति समुदाय को स्वास्थ्य सुधार प्रख्यान बांसवाड़ी नगर पालिक सक्रिय क्लिमा रकम नामदा वैद्य अस्पताल संचालन में समस्या और हिमल चल सहित पार्टी में एकजना पकड़ा हुआ बाइसौ पर्था बाल विभाग नेता निरंतर लड़ी रहने उपाल सभामुख ठाकुर को भनाए। बांसवाड़ी नगर पालिकाले प्रदान गर्दै आएको सेवा सुविधाको प्रभावकारी विषयको सदनको सुनवाई सम्पन्न भएको छ। बांसवाड़ी नगरपालिका वडा नम्बर 156 भएको कार्यक्रममा नगरपालिकाले सार्वजनिक सेवा प्रभावलाई थप पारदर्शी जवाब दिने र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। बांसवाड़ी नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष 2082-83 तेस्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनवाईको प्रगति प्रतिवेदन शाखाका प्रमुख शरद बहादुर भोलि प्रस्तुत गर्नुभयो।
1: हामीले चलेको खर्च

इसका प्रमुख उदाहरण था पिछले सांस्कृतिक प्रदर्शन। इसका साथ ही स्वास्थ्य आना समूह को नियमित परीक्षण तथा अंतर क्रिया कार्यक्रम समेत संचालन कार्य को स्वास्थ्य साथी सुनाया छ। नगर पालिका समुदाय को सहभागिता मार्फत स्वास्थ्य सचेतना बढ़ाते

सुनवाई सम्पन्न शिक्षा और पूर्वधारणा उल्लेखनीय प्रगति समुदाय को स्वास्थ्य सुधार अभियान और पासपोर्ट नगर पालिका सत्र बीमार कम नाउंदा तोड़ अस्पताल संचालन समस्या और इंदौर चले सहित 5 जुलाई चुनाव पत्र

0: सकत साता नदी नगर सोपनी जर से जर पानी पी सरी मजू नरतवा मौसमी कुंकुल खाई तो पुलिस की जैसे हम जुलाहार होने ना जुलाहार होते
1: ट्रांस इंटरनेशनल नेपाल और दिल्ली बापतरणी विशेषज्ञ समूह टी ग्रुप की साझेदारी में बटिया जिला में संचालन हुई हर विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सतलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाभ जारी संदेश

स्वास्थ्य रिपोर्ट दिया और सभी स्वास्थ्य सेवाओं प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी प्रतिबद्धता का की वैवरिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वस्वत उपलब्धि चाहिए यहाँ कल को स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक पर्व कौशल्य अस्पताल बास्करी में संपर्क करना।

0: মেডিয়াম ভূত হয়েছে, নাহলে কিন্তু পুরুষরা বেকার হয়ে যাচ্ছে।
1: अब हमने महिला चतुर्थ पालन कर लेकर कृषि भारतीय रेखा के लेकर दुध उत्पादन और कमी आने उच्च जोखिम की सही और सात पर सबसे उच्च प्राप्तों के कारण दुध उत्पादन घटे आमदानी और मूल्य घटाना सही
2: इसीलिए हजूर को यही जोखिम में संबोधन करते काम चैट को सहकारी का सही को इंसुरेंस का आधुनिक पद्धति का आधारित हुई बिना कोई झंझट जीवा करना बिना कुनै कागजी पचार गर्ने व्यवस्था ल्याएका छौँ। बिमा छैन भने जोखिम छ, बिमा छ भने भरोसा छ। सुरक्षा आजदेखि

0: स्वास्थ्य सेवा में प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी प्रतिबद्धता घटी मेरमिरिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वसुलभ रूप में देखिए यहां कुल स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक तरलता करने से औषधि अस्पताल बांसगढ़ी में संपर्क करना आर्थिक अनुरोध करा दी
1: अस्पताल से सेवा
0: 24 घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्यार छाती कलेजो नशा मुटु चेक जांच करेगा
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हाथ जोड़ने तथा जनरल सर्जरी प्रसूति सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा सम्पन्न ल्याब सेवा उपलब्ध भा प्यारालाइसिसको मुख बाँकिना नसा जाप गैलक हात द्वारा निचल्ना बिरामी मुख नकलाई फिजियोथेरापी तथा उपचार कैलेखा
0: नसा जाप गैले बिरामी हुन्छन् के बिना अपरेसन फिजियोथेरापी तथा एकुप्रेसर थेरापी से सफल उपचार गर्छ
1: 24 घंटा एम्बुलेन्स को व्यवस्था गरिएका असहाय नागरिक एक महिला अनाथ बाल बालिका अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक गणपूर्ण सेवामा 10% छुटके व्यवस्था गरिएका कोशीले अस्पताल प्रणाली बाँसरी शाखा 5 बाँसरी बर्दिया पुरानो पेट्रोल पम्प दक्षिण बाँदर
0: सम्पर्क फोन नम्बर 084-00192 ओ 084-00210 बाँसरी बर्दिया सँगसँगै पूर्व 11 नम्बर 14

0: सोचता हूँ कभी संतुलित खाना खाना रोजी स्वस्थ किशोरी जो स्वस्थ भविष्य का भार हो। रेडियो पूर्वाचार एफएम का सहकार्य में स्वास्थ्य कार्यालय बर्दिया से जनक मोचारी संगे
1: कहाँ
2: हमने उसकी कार्यक्रम को खेती समस्या
1: कहा

तिनामा सेतु नगरी तर पुन नियन्त्रण गरी आज निर्णय कान्ति जीवन हजुर निशा नानोमा सेपाटी स्वस्थ जीवन अपनाई।

सोचने का तो सिर्फ आज सुन फोटो जरा सो देना हो वन की सुनसानी की गहना बड़ा मतलब है ओकर पसंद ना नंबर वन सुनसानी गहना तैयार करे वो अड़कर अनुसार गहना से बनी खाई मोदी जी हम के नेपाल तक लेना तो फिर दूस गलत पूरा ढेर भरा लागे हम के पूरा 300 ले तो काम से सब छो आज ये फोटो जरा से प्रगति के साथ आप आगे बगैर किसान चक्की लग गए सीधा करके सारे और सब कुछ लगे पड़े।

0: तीन लाख से तो सामान घटा पड़ना हो तीन लाख ऋण ले रहा हूँ तीन लाख से तीर तीर से को अब मन तीन पड़ना पड़ी बात था
1: अपना तीन लाख रूपया ऋण ले रहा हूँ तीन लाख रूपया चिंता कर से लगा के ऋण ले कर घर को ब्याज किया और चलाता अपना थाना जमा और उसने अपना सारा ब्याज रकम तीन लाख रूपया से ढेर किलो
0: पड़ना पहले रहे देखा ये बस कर जाएगी क्यों

दुई सन्तुलित खाना खाई व्यायाम शब्द करी तुम्हारा पान मोदी रहना से दूर रही नियंत्रण करी आज कार्य जीवन अदरा मिशाना रोग में से पार्टी स्वस्थ जीवन अपनाई रेडियो गुरुवार सहकारी में स्वास्थ्य कार्य प्रत्याशी जनता जारी संदेश।

0: गौड़िया से उत्पादित हमारा संदेश पहुंच गया था। साथ ही अपने राजा प्रभुपाद जी का बालिका बाकी मस्ते प्रसंग प्रसारण की बात हमारे संदेश का खरीदारी मुख्य मुख्य समाचार का शीर्षक मजे पांच बड़ी छह सौ तकिया मत हुई पूजा लागू उत्तर प्रदेश नियंत्रण में चौथे की पांच बड़ी माह का महोत्सव 2082 के साथ निक सुनवाई इंजन नंबर 33 स्पष्ट पड़ेगा अभियान में पांच ट्रैफिक कटाई 12 मंत्रालय खाना आत्मा छा घोषणा सहित प्रवेश का नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक प्रधानमंत्री का प्राथमिकता में काम विदेश भ्रमण का योजना हो।
1: बांसगढ़ी नगर पालिका छह सौ जंगा में दुनिया पूजा के बाद खेती पार्टी का काम करना द्वारा गांव के मेरे बाजार व्यवधान में इसको अग्रभारी मना हुई।

खेती पूजा कारण समुदाय में खेती पाती काम शुरू कर दुर्गा पूजा करना चरण कायम होगा खाने ग्यार बिना गला कारण समुदाय में दिया दुर्गा पूजा करना चरण न रखो ये पूजा का मुख्यता पूजा करता इसे सत्ताईस घर को लिया गाँव में जिस कन्या को

84 का नीति तथा कार्यक्रम अब इस सभा में प्रस्तुत करना प्रति सभा प्रमुख कृष्ण बहादुर अतिमानक प्रति सभा का आठवां अधिवेशन और छठों को चाहेगा सरकार का नीति तथा कार्यक्रम पेश कर रखे जब सरकार सुशासन आर्थिक समृद्धि व प्रशासनिक सुधार अपना प्राथमिक प्रवचार्थिक आंदोलन बारह मंत्रालय अपना पुनः समझना आएगा महीना 2083 साल 1 गति से मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद का कार्यालय सहित जमा 8 मंत्रालय का अंतर घोषणा करना सरकार का काम होना सुस्त वित्तीय को प्रभावकारी बनाए उसी नीति विलक समय तथा कृषि का आर्थिकीकरण हो व्यवसायीकरण कला प्रादेशिक कृषि एवं गन्ना तथा एक पालिका एक आर्गेनिक वैधानिक वाली उत्पादन नीति लागू करना होता अपने वस्तुओं में प्रादेशिक बागवानी स्रोत केन्द्र खासी मछली स्रोत केन्द्र में पहाड़ी फोटो स्रोत केन्द्र प्रधान में तरकारी पिया स्रोत केन्द्र होगा आलू पिया स्रोत केन्द्र स्थापना प्रक्रिया आगे बढ़ेगा उल्लेख कीजिएगा वैदेशिक।

प्रशासक विक्रांतना लघुत महिला उपसिद्धमा पहिला कार्यक्रम संचालन करना निकलेगा कार्यक्रम स्वर्गत आयोग राष्ट्रीय निकुंज शाखा शिवभर

संस्था निरंतर पटना तथा त्रिपुरा एक पोखरी कार्यक्रम संचालन कृषिबा स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वच्छ मातृत्व अभियान अंतर्गत दुर्गम क्षेत्रीय कंक्रीट शिल्प तथा प्रक्रिया कार्यक्रम निःशुल्क एम्बुलेंस हवाई उद्धार सेवा संचालन करना होगा। राप्ति प्रादेशिक अस्पताल में विशेष क्रिया अस्पताल में स्तरोकरण तथा राप्ति प्रादेशिक अस्पताल में चरण प्रसार सेवा विस्तार करना नीति कार्यक्रम उल्लेख शिक्षा सुशासन डिजिटल सेवा और सामुदायिक विद्यालय सुदृढ़ीकरण लुम्बिनी प्रांतीय विश्वविद्यालय का विकास डिजिटल उपकरण फाइल टैबिंग ट्रैकिंग तथा एकल बिंदु सेवा प्रणाली लागू करना होगा। संघ कर्मचारी तथा शिक्षक विद्युतीय अभिलेखीकरण तथा प्रवेश किताब खाना व प्रवेश निकृत खान कोष स्थापना करना नीति सरकार पाकिस्तान होगा। ये खबर पानसम प्रकाश गुप्ता पठान प्रदेश भरखर भ्रमण सा प्रथा संरक्षण तथा विकास संबंध में व्यवस्था प्रबंधन विधेयक आज सदन में सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार का आज

0: आर्जन करो विशेष छलफल निकलो बैठे पोखर कर चाहे हिमाचल
1: समाचार संवाद हमारे संदेश का समय पाएगा लगता हमारे संदेश होने का असर पड़ेगा मुख्यमंत्री संदेश फिर फैला वास्तव नगर पालिका छह सौ तरीवा प्रिय पूजा की चिंता और सरकार का प्रभुत्व तथा शिक्षा एवं खेल उप मंत्री स्वास्थ्य

विचार अब हमार संदेश स्वतः कल बिहार 7 बजे नेपाली भाषा हमार संदेश के कई बाकी समाचार समाचार कक्ष का सबको संक्रिया गौरी शंकर कैमरा मानुष हाल संगठ संक्रिया दिन सुबह कुमार के विधायक।

0: खाना खाई, व्यायाम शब्द करी,
1: धूम्रपान पिला बसे नगरी, तर भन दिए तर्कली,
0: आज मेरो पैदिक जीवन अचार निशाना रोग समाजी स्वस्थ जीवन अपनाई।
1: रेडियो गुरुबाबा एफएम को सहकार्यमा स्वास्थ्य कार्यले प्रत्याशी जनहित मन्त्रालय सन्देश।
2: बिहानी क्षेत्र हिँड्ने छोडी
3: तपाईँको

जाने को भूकंप के लिए कोई स्थायी आवास नहीं मिलने के लिए प्रतिक्रिया का सबको कारण है।

0: 是八几岁也没一个心不心不打他的地啊，学生的地方拉下的吧，
1: 我的天有个生意有个你是也是铁皮不打我没给你今天早上铁皮你下地他是分析铁皮他是什么三个皮
0: 你看他是你几三周期的皮将来不是将来做谁的
2: ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना,

0: परिवारमा दूरा रही तर भन नियन्त्रण गरी आज निर्णयका जीवन हजार निशामा रोग मस्यो भाँटे स्वस्थ जीवन अपनाई रेडियो गुरुबाबा एफएमको सहकार्यमा स्वास्थ्य कार्यले प्रत्याशी जनहितमा जारी सन्देश
1: बड़ा हाथ लाख नियंत्रण प्रणाली डिविजन का सहायक प्रत्याशी।

0: अभिषेक था। उन्होंने बहुत आगे लगे और अन्य प्रतिज्ञा की यात्रा नहीं करी। वो अपराध में सजग होकर सजा भागीदार बने।
1: डिवीजन कर कार्यालय पर दिया फोन नंबर 0 84 24 156।

0: και να βρω εκεί πότε τα πιέλα, να μην έχουν ισόρτη σε βάρος για κολλήμα, όσο λέει ασπατάρι πάσχαρι με ένα σαν παρκαλώνα, μόνο άλλο το κόμμα.
1: Ασπατάρι πορτάνε με δύο σε βάρος.
0: Σο πίσω σαρτάρ, να τα πω πόρτε τσέγγι, γράλι μα ούπου τα σε
1: βάρο.
0: प्रत्येक दिन नशा तथा जरिया नाक कान तथा घाटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा चेक जाँच गरिन्छ।
1: प्यारालाइसिस भई मुख बाँधिने नसा च्यातिएर हात खुट्टा नचल्ने बिरामीहरूका लागि फिजियोथेरापी तथा एक्युपन्चर थेरापीको विधिबाट उपचार गरिन्छ।
0: नसा च्यातिएका बिरामीहरूको बिना अपरेसन फिजियोथेरापी तथा एक्युपन्चर थेरापीबाट सफल उपचार गरिन्छ।
1: बिरामीहरूको सुविधाको लागि 24 घण्टा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ। असहाय नागरिक, एकल महिला, अनाथ बालबालिका, अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई औषधि बाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवामा 10% छुटको व्यवस्था गरिएको छ। कौशल्या अस्पताल प्रणाली शाखा पाँचवडी पाँच पाँचवडी पुरानो पेट्रोल पम्प पछिपट्टि
0: सम्पर्क
1: साथै कोर्टको एकाआफ्नो सूचनामा